बच्चे प्यारे होंदे हन, अकाल पुरख वाहिगुरु ने अपने भगत प्यारे हन भाई। हुण मोटे मोटे जंजीरां दे विच कबीर नूं जकड़ के ना आ वेखदे हां हुण इहनूं।

बिना सिमरन तो तेरा जीवन किसे भी लेखे नहीं। सेवा और सिमरन तो बिना इस तरह जीवन है, कुआर कन्या जैसे करत सिंगारा, क्यों रलिया माने बाज बतारा। भाई साहब गुरदास जी सिख पंथ दे वेद व्यास कहंदे हन, त्रिग सेवा बिन हाथ पैर होर निफल कर।

गरीब नवाज सच्चे पातशाह आ मृतक शरीर पिया है, बाघ ने पहला आके इसन सुंगया चला गया, फिर इसका मस्तक सुंगया, हाथ सुंगे कदम सुंगे, फिर वापस चला गया। जापदा सी कई दिनों तो भुखा है, पर उसने अपनी खुराक वेख के इसन भक्षण क्यों नहीं किया। धन गुरु नानक पातशाह कहणगे, मरदानिया आ कीर्तन दी रब्बी बाणी दी आवाज इसके कन्ना तक पहुंची है और इसका मन निर्मल हो गया, हिरदा स्वच्छ हो गया। इसने जिस मृतक शरीर नूं सुंघिया ना, इसलिए सुंघिया कि इसने कोई चंगा कर्म भी किया, लेकिन कोई नहीं किया। फिर मन में आया, हो सकता है कदे अपने गुरु अगे इसने शीश निवाया होवे, शीश सुंघिया हो सकता है। इसने कदी सेवा करके अपने हाथ सफल किते होन, हो सकता है कदी इसते कदम सतगुरां वल गए होन, गुरु वल गए होन। पर मर्दानिया इसते कदम सदा माड़े पासे जांदे ने, इसके हाथ सेवा तो बिना इसका मस्तक कदे गुरु के चरणा ते नहीं चुकिया, जिस करके बग्याड़ नू ज्ञान हो गया कि जे मैं इस पुरुष का मास खा लिया तो मैं भी कुंभी नरक का भागी बन जावांगा। सो प्यारी सात संगत, मनुष्या जन्म उन्हों का ही सफल है जिन्होंने भाई सेवा और सिमरन करके

لاہور جا پہنچ شہر تو باہر جا کے ڈیرا لایا شیٹھ دنی چند اتوں لنگ رہا سی درشن کیتے ٹھنڈ پی بینتی کیتی مہاراج میرے گرہ لکھے چرن پاؤ تن گرو نانک پاتشاہ تارن جو آئے سن آپ دنی چند دے گھر گئے تے پھر کی تکیا ब्राह्मणा नु भोजन छकारे बड़े पदार्थ बनाए हुए हैं धन गुरु नानक पातशाह पूछन लगे दुनी चंद आज आ ब्रह्म भोज कैसा कर रहे हो कोई खास दिन है तो दुनी चंद ने आख्या महाराज अज मेरे पिता दा श्राद्ध है ते 100 ब्राह्मण नु सद के भोजन छकाया धन गुरु नानक पातशाह कहन लगे भाई तेरे पितर रज गए हन आख्या जी ब्राह्मण तो एवं कह रहे सी ओ तां कहंदे तुर गए हन भाई दुनी चंद तेरे पितर बड़े खुश हन बड़े सुखी हन स्वर्ग विच बैठे आनंद मान रहे हन ता धन गुरु नानक पातशाह कहन लगे दुनी चंद तेरा पिता ता 3 दिन तो भुखा है 3 दिन तो उसनू कोई खुराक नहीं मिली ओ शेर दी जूनी विच है महाराज मेरा पिता बड़ा धर्मात्मा सी पुन दान करन वाला सी ते शेर दी जूनी विच है धन गुरु नानक पातशाह कहन लगे इस दा जवाब तैनू तेरा पिता ही देवेगा तू डरी ना आ ऐश दशा वल चला जा इतनी दूर जाएगा ते शेर बैठा होवेगा डरी ना ए भोजन उसके अगे रख दे ओ शक लेगा ते फिर ओदे विच समर्था आ जाएगी तैनू दसन दी शेख दुनी चंद जिवें साहिब जी ने दस्या सी जाके कीता जंगल बिया बन विच

जिवें आप जी ने बचन कीते सी ओ सत आपने बड़ी कृपा की मेरे पिता का उधार होया हुण मेरा भी उधार कर दे वेखो ना कोई धन दौलत की कमी नहीं जदों एक लख मोरां कठियां हो जांदियां हन तां मैं एक तुजा अपनी कोठी दे अगे ला देंदा हां ते 12 तुजा लग चुकियां हन 12 लख

जीवन आनंदमय हो गया, जिस जीवन नूं कोई डर सी ना भाई कोई धन चुरा ना लवे, अज सुख दी नींद सौंदा है, हर वेले सिमरन करदा है। ते धन गुरु नानक पातशाह जी नूं आके कहन लगा, महाराज हुण कोई होर सेवा बख्शो। तां गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने सूई दित्ती, आख्या भाई दुनी चंद आ साडी सूई रख लै अमर।

ते मैनू निवाजें, मैनू मान बख्शेंगा। मैं तेरे दर से आके तेरे अगे पुकार करदा हां, कि कृपा कर मैनू अपना।

मगर सारे कार्य स्वारण वाला समर्थ ओ परिपूर्ण परमात्मा ते गुरसिख ए यकीन करदा है कि मैं मनुख दे चरना कमला तो की लेना है, मनुख दी ओट करके की लेना है, क्यों ना मैं उस परमेश्वर

0: धर्मात्मा हो।
1: गुरु तेग बहादुर साहब जी कहने लगे दसो भाई ऐसा कोई है?
0: बताओ अगर कोई धर्मात्मा हो, जो इंसान के जामे में परमात्मा हो, ना जिसको गुना

गला खुद कटाने को बस आप ही है। दसम पिता दी ए गल सुन के गुरु तेग बहादुर साहिब पातशाह ने अपनी कुर्बानी दिती ते फिर क्या गए ए सारे हिंदुस्तान वास्ते साहबा ने अपनी कुर्बानी दिती। तिलक जंजू राखा प्रवतांका कीनो बड़ो कलू में साका ते फिर बड़ा सुंदर करके लिखिया गया है।

तोर मस्तक हर प्रभ लिखिया गुरु नानक मिलिया। भई गुरु सिखां दे चरणां दी जपन वालियां दे चरणां दी तूड़ी, गंगा जमुना सुरस्ती गोदावरी ते करें उद्दम तूर साधु की थां, किल विख मैल भरे

सब सुख है, पूर्ण सुख है। प्रभु सिमरन विच अधूरा सुख नहीं, छोटा मोटा सुख नहीं, अल्प सुख नहीं है, परम सुख है, पूर्ण सुख है। ते गुरु नानक दा दर संसार दे लोकां नूं दुखी देखना नहीं चाहता, देख ही नहीं सकता। गुरु नानक दे दर ते आपां पढ़दे हां, गुरु नानक देखदे ने संसार सुखी नहीं, ते दर्दमंद गुरु नानक लोकां नूं सुख वंडण तुर पैंदे ने। बाबा देखे ध्यान तर जल्दी सब रजमी दिस आई, उठ के तुर पैंदे। धन गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह अपने माल की दरगाह चरजोई कर दे, जगत जलंधा रख ले अपनी कृपा दा, जित द्वार है उपरे तित है ले बार, जिमें बचदा ही बचा, इन्हां तपदियां सर्दियां जिमें शांति दे सकना मेरे साहब उवें ही दे। जिस राह तो जिस दर तो कोई तेरे नाल जुड़दा जोड़ दे, साहब टुटे हुए मनुख नूं, बिखरे हुए मनुख नूं, बेचैन मनुख नूं निरंकार नाल जोड़ के सुखी कर देना चाहते, इन्ना भर देना चाहते ने सुख नाल के मनुख आप ही सुखी होवे ते आले दुआले नूं सुख बने। इत्थे भी कहिंदे ना आप ही सुख पा, होरना नूं भी जपा ते उन्हां नूं भी सुखी कर। सिमर सिमर सिमर सुख पावो, जप के सिमर के मुड़ मुड़ के सिमर के सुख लै लै, आनंद लै लै। सर्व कल्याण सुख निध नाम, नाम वो खजाना है जिस सारे सुख ने, ते जिन्होंने इस सुख नू प्राप्त करने का यत्न किया है उन्होंने जो कितने किनका मात्र भी इसका सची मुची प्राप्त हो गया, थोड़ा जिहा भी उन्होंने रस आ गया। साहब कहते हैं मैं उसकी वडियाई नहीं दस सकता, संकल्प भी बख्शे है, आप संकल्प करिया करिए, मन में एक इच्छा करिया करिए, आशा करिया करिए, सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, जपदा हां जप जप के सुख पावांगा, काल कलेश तन माहे मिटावो। जीवन में शरीर में बरते हुए कलेश पाप सारे धोते जाणगे, सिमरों जात विसुंभर एक है, वो जरा विश्व दा मालक वाहिगुरु अकाल पुरख है, उसनू याद करा, उसनू चेते करा, उसनू जपा, जिसनू अगे भी बड़े याद कर दे। नाम जपत अगणत अनेक है, वेद पुराण सिमरत ये सारे जिसकी सिफत करते हैं, शुद्ध अखरां नाल जिहड़े उन्हू याद करते हैं।

आख्या फरमाउंदे आम करके दुनिया कन रस विच उलझी है, ये आत्म रस दी खुराक है, आत्म रस दे जाने ही सो है खालस दी।

0: अनंत न पावत देव सबे मुल इंद्र महाशिव जो करी तेरा अंत न पार वारिया
1: अंत न पावत देव सबे
0: अंत न पावत देव सबे